0: வந்தே மாதரம்.
1: சுஜலா சுஃபலா மலய ஜ சீதலா.

सुहासिनी सुमधुर भाषिणी।

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद माह की 24वीं तिथि, तदनुसार 15 सितंबर सन 2026 सुबह के 5:58:40 हुए हैं। अब हमारा आज का प्रसारण प्रारंभ होता है। आप सभी श्रोताओं का स्वागत है।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि अधिकांश राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति से दुनिया ने भारत के मजबूत नेतृत्व और विभिन्न देशों को एक मंच पर लाने की क्षमता देखी। डॉ. जयशंकर ने बताया कि सम्मेलन में 11 सदस्य देशों, 10 साझेदार देशों, 4 क्षेत्रीय संगठनों और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल 32 प्रतिनिधि मंडल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष जैसे सबसे जटिल मुद्दे पर भी आम सहमति बनना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डॉ. जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने स्पष्ट रूप से माना है कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक कृत्य है। अमेरिका के एक विश्लेषक ने नई दिल्ली में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को बहुत सफल बताया है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र अलग अलग विचारों वाले देशों के बीच आम सहमति बनाने की भारत की क्षमता को दर्शाता है। अटलांटिक काउंसिल में दक्षिण एशिया मामलों के वरिष्ठ फेलो माइकल कुगलमैन ने कहा कि ये घोषणा पत्र भारत की बढ़ती वैश्विक समन्वय क्षमता और ब्रिक्स की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है।

0: के बार लाइन के जरिए 600 मेगावाट तक और टनकपुर महेंद्र नगर लाइन के जरिए 54 मेगावाट विद्युत आपूर्ति की स्वीकृति दी गई है।
1: हाल ही में बाढ़ से नेपाल में जल विद्युत अवसंरचना को काफी नुकसान हुआ है, जिससे उसकी घरेलू बिजली निर्माण क्षमता कम हो गई है और बिजली की अतिरिक्त आवश्यकता हो गई है। सोमवार से मिली मंजूरी से नेपाल को मुश्किल समय में बिजली की जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी और भारत और नेपाल के बीच करीबी और लंबे समय से चले आ रहे ऊर्जा सहयोग को और मजबूत करने में सहायता मिलेगी। मंत्रालय ने कहा है कि भारत नेपाल की सहायता करने और ऊर्जा क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। ये वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को एक मंच पर लाने तथा सहयोग, नवाचार, विनिर्माण, निवेश और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर कहा कि पार्टी की जीत झूठ की गूंज पर सच्चाई की जीत का साक्ष्य है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा है कि न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र मजबूत, सक्रिय और समयबद्ध है। उन्होंने न्यायपालिका में लगातार सुधार और अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में कल आयोजित 6वें राम जेठमलानी स्मृति व्याख्यान में मुख्य भाषण देते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सुधार को नियमित प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए। झारखंड में सीआईडी ने झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं के मामले में एक कोचिंग सेंटर संचालक संजीत कुमार को गिरफ्तार किया है। रांची के रातू रोड इलाके में शिवांगन कोचिंग सेंटर चलाने वाले संजीत कुमार पर आरोप है कि उसने एजेंट के तौर पर उम्मीदवारों से परीक्षा पास कराने का वादा कर पैसे वसूले थे। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। शुरुआत में आइए सुनते हैं ये मातृवंदना समूह स्वर में।

और अब कार्यक्रम अर्चना में आइए सुनते हैं एक ये भजन अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाजों में। शब्द रचना कलानाथ शास्त्री की है, संगीत अहमद हुसैन का।

और इसी भजन के साथ कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर का प्रसारण। वक्त हुआ है सुबह के 6:25। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण।

0: कार्यक्रम विवरण में आपका स्वागत है। अब से कुछ ही देर बाद यानी 6:30 पर सुनिएगा श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। स्वर होगा सुरेश वाडकर का। 6:40 पर आनंद लीजिएगा भूले बिसरे गीतों का। संस्कृत समाचार दिल्ली से रिले करेंगे 6:55 पर सुबह सुबह। यह दैनिक कार्यक्रम सुनिएगा प्रातः 7:00। 7:05 पर होगा कृषि संकेत। प्रादेशिक समाचार भोपाल से रिले करेंगे 7:10 पर। 7:20 पर सुनिएगा मन चाहे गीत और 7:45 पर संगीत सरिता। 8:00 समाचार प्रभात दिल्ली से रिले करेंगे। लोक संगीत सुनिएगा सुबह 8:15 पर। आज सवेरे 8:30 पर सुनिएगा पॉडकास्ट विद आकाशवाणी सागर, जिसमें कुश्ती का बदलता स्वरूप इस विषय पर मनीष यादव से बात करेंगे जय शिखर। संगीत सरिता का लुत्फ उठाइएगा 8:45 पर। सुबह 9:00 से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम मुंबई से रिले किए जाएंगे। 10:00 सुनिएगा जिले की चिट्ठी भोपाल से। 10:05 पर होगा कार्यक्रम राग रागिनी आपके पसंद। ये कार्यक्रम आज आप सुनेंगे सुबह 10:30 पर। 11:00 से एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग हम आपको सुनवाएंगे। दोपहर 2:00 से आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण भोपाल से रिले किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार होंगे दोपहर 2:10 पर भोपाल से। दिल्ली से सुनिएगा दोपहर समाचार दोपहर 2:15 पर। दिन में 2:30 भोपाल से माफ कीजिएगा मुंबई से रिले करेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम। शाम 5:00 इस घंटे की सुर्खियां सुनिएगा भोपाल से। 5:02 पर रिले करेंगे युवाणी भोपाल से ही। शाम 5:30 पर सुनिएगा संगीत सरिता। विविध भारती सेवा के कार्यक्रम मुंबई से रिले करेंगे शाम 6:00। 6:30 पर सदाबहार गीत होंगे। 6:45 पर सुनिएगा लोकरंग। शाम 7:00 हिंदी समाचार दिल्ली से। 7:05 पर कार्यक्रम विवरण होगा। 7:10 पर प्रादेशिक समाचार भोपाल से रिले करेंगे। लोकरंग सुनिएगा शाम 7:20 पर। और शाम 7:30 पर भोपाल से रिले करेंगे कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। रात्रि 8:00 का वक्त होगा चित्रपट संगीत के लिए। संगीत सरिता का लुत्फ उठाइएगा रात्रि 8:20 पर। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या दिल्ली से रिले करेंगे। 9:00 सुनिएगा मन चाहे गीत और 9:30 से विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई से रिले किए जाएंगे। और इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब समाप्त हुआ। और श्रोताओं एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। कार्यक्रम फोन करें गीत सुने की रिकॉर्डिंग आज सुबह 11:00 से की जाएगी। फोन करने के लिए हमारा फोन नंबर है 240-845। नंबर एक बार फिर सुन लीजिएगा 240-845। और सागर का एसटीडी कोड है 07582। तो इस नंबर पर फोन करना ना भूलिएगा सुबह 11:00 कार्यक्रम फोन करें गीत सुने के लिए।
1: यह आकाशवाणी भोपाल है। आइए अब आपको सुनवाते हैं श्री रामचरितमानस का।
0: और अब 6:30 हो चुके हैं, तो आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ सुरेश वाडकर के स्वर में।

अयोध्या से आई बारात के जनवासियों ने सुविधा पूर्वक स्थापित हो जाने का समाचार पाकर मुनि विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर राजा दशरथ के पास पहुँचे। अवध नरेश ने मुनि की चरण धूलि सिर से लगाकर दंडवत प्रणाम किया। दीर्घ अवधि के बाद राम लक्ष्मण को अपने चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदित करते देख दशरथ जी का हृदय आनंद से भर आया। उन्होंने पुत्रों को उठाकर गले से लगाया। भरत ने छोटे भाई शत्रुघ्न समेत श्री राम को प्रणाम किया और दोनों भाई लक्ष्मण जी से गले मिले। श्री राम को देखकर बारात में आए अयोध्यावासियों का जी जुड़ा गया। राजा दशरथ के चारों पुत्र पिता के पास ऐसे शोभायमान हैं मानो अर्थ धर्म काम तथा मोक्ष ने साक्षात शरीर धारण कर लिए हों। अगवानी में आए पुरोहित शतानंद, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध, विद्वान तथा भाटों ने राजा दशरथ और बारातियों की अभ्यर्थना की। बारात लग्न के दिन से पहले आ गई है, ये जनकपुरवासियों के लिए विशेष आनंद का बानक बन गया है।

अभी आपने सुना श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ सुरेश वाडकर के स्वर में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर का प्रसारण FM 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6:40 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

मुकेश और शमशाद बेगम की आवाजों में ये गीत आपने सुना। फिल्म का नाम था मेला। शकील बदायूनी ने गीत लिखा था, धुन तैयार की थी नौशाद ने। और अब आइए एक और गीत सुनते हैं जिसकी धुन नौशाद ने ही बनाई है। बोल तनवर नकवी के हैं, आवाजें शमशाद बेगम और जोहराबाई की। फिल्म का नाम है अनमोल घड़ी।

आइए सुनते हैं सुरैया की आवाज में शमा फिल्म का गाना। कैफी आजमी ने गीत लिखा है, धुन तैयार की है गुलाम मोहम्मद ने।

और कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं बहुरानी फिल्म का गाना। लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाजें हैं, साहिर लुधियानवी ने गीत लिखा है, धुन तैयार की है सी रामचंद्र ने।

लता मंगेशकर और हेमंत कुमार के गाए इसी गीत के साथ कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब समाप्त हुआ। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से FM 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:55 होने को हैं। संस्कृत में समाचार दिल्ली से रिले किए जाएंगे कुछ ही देर में।

0: प्रकरणे कृत्रिम बुद्धिमाध्यमेन निरीक्षणं भविष्यति। एषः नियमः 27-2000 वर्षस्य अप्रैल मासस्य प्रथम दिनांकात् प्रभावी भविष्यति। परीक्षा पारदर्शितां रक्षितुं झारखंड सीआईडी आरक्षिभिः द्वौ अभियुक्तौ निगृहीतौ। सीआईडी विभागेन प्रतिपादितं यत् धनं गृहीत्वा परीक्षा सफलतायाः मिथ्या प्रतिश्रुतिं यच्छन् संजीत कुमारः निगडितः। अपरञ्च जीएसएससी सीजीएल परीक्षा प्रकरणे पश्चिम बंगालात् अभियुक्तः दिलीप पासवानः न्यायिक अभिरक्षायां प्रेषितः। भारतस्य मुख्य न्यायाधीशेन सूर्यकान्तेन न्यायाधीशानां विरुद्धं परिवादानां निवारणाय सर्वोच्च न्यायालयेन उच्च न्यायालयेश्च विकसिता व्यवस्था सुदृढा अतीव प्रत्युत्तरशीला समयोचिता च वर्णिता। अनेनैव तेन न्यायपालिकायां निरन्तर परिष्कारस्य अधिक पारदर्शकतायाश्च आवश्यकतायां बलं प्रदत्तम्। ह्यः नवदिल्ल्यां प्रत्यक्ष न्याय प्रदानं न्यायव्यवस्थाया स्तम्भरूपेण पारदर्शिता जनविश्वासश्च इति विषयमाधृत्य आयोजिते षष्ठे रामजेठमलानी स्मृति व्याख्याने मुख्य भाषणं कुर्वन् मुख्य न्यायाधीशः अवोचत् यत् परिष्कारः एव शाश्वत नियमो भवेत्। समुद्र सुरक्षां प्रति संशयमुत्पादयन् अमेरिका ईरान देशयोः प्रत्यग्रह विवादः समुद्भूतः। ईरानीय सैन्यदलेन आख्यातं यत् तैलपोतः सुरक्षा सीमामतिक्रम्य जलसुरंगेन विस्फुटः। परम् अमेरिका देशस्य मध्य कमाण्ड विभागेन अस्य खण्डनं कुर्वता प्रतिपादितं यत् ईरानीय ड्रोन इत्यनेन एव अस्य पोतस्य उपरि आक्रमणं विहितम्। नेपालस्य विद्युत् संकटम् अपाकर्तुं भारत सर्वकारः अग्रे आगतः। भारतेन दिसंबर मासस्य 31 दिनांकं यावत् प्रतिदिनं विद्युत् निर्यातम् अन्वामोदी। नेपाले अप्लावेन जलविद्युत् परियोजनाः विनष्टाः संजाताः। प्रकृतिकोपस्य संकेतं ददत् भारतीय ऋतुविज्ञान विभागः प्रत्यपादयत् यत् अद्य दिल्ली हरियाणा असम प्रभृति राज्येषु अतिवृष्टिः भविष्यति। विभागेनानेन प्रतिपादितं यत् दक्षिण भारते अपि अतिवृष्टिः भविष्यति। इति वार्ताः।
1: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7 बजे हैं। अब आप सुनेंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम सुबह सुबह।

कार्यक्रम सुबह सुबह सुन रहे सभी श्रोताओं को ब्रिजेश रिछारिया का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, विघ्नहर्ता गणराज विराज चुके हैं, हर गलियां और चौराहे रोशन हैं, साथ ही पर्युषण पर्व भी आरंभ हो चुका है। चारों ओर आस्थामय वातावरण बना हुआ है। ये पर्व व्यक्ति वर्ग या समाज विशेष तक सीमित नहीं है। मूर्तिकार से लेकर सज्जा सामग्री, मिष्ठान, खिलौने आदि तमाम चीजों के विक्रेता अनायास ही उत्सव से जुड़ जाते हैं, इसके सहभागी बन जाते हैं। ये उत्सव निश्चित तौर पर हमारी संस्कृति के वाहक हैं। इनमें हर किसी को अपनी सहभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए। स्वरूप में कुछ बदलाव हुआ है जो समय के साथ होना स्वाभाविक है, लेकिन यह ध्यान जरूर रखना चाहिए कि पर्यावरण और परिवहन के लिए खतरा ना बने ये उत्सव, और उत्सव आनंद का ही संचार और प्रचार करें। अनेक संस्थागत और सामाजिक संगठन द्वारा इको फ्रेंडली मूर्तियां जो पर्यावरण मित्र हों, पर्यावरण हितैषी हों, पर्यावरण के लिए हानि ना पहुंचाए, ऐसी मूर्तियां और सजावट की चीजें उपयोग में लाने की अपील की जाती है। मिट्टी की मूर्तियां भी उपलब्ध कराई जाती हैं। प्रयास सराहनीय है, लेकिन इनको व्यक्तिगत स्तर पर अपनाया जाएगा तभी पूरा सुधार संभव है। छोटे छोटे उपाय करके हम उत्सवों को और अधिक महत्वशाली बना सकते हैं। साज सज्जा के लिए प्लास्टिक और कृत्रिम सामग्री के स्थान पर

0: और वितरण के लिए प्लास्टिक डिस्पोजल का उपयोग न करें, बल्कि उनके स्थान पर पत्ते के दोने और कागज की प्लेट्स उपयोग में लाई जा सकती हैं। लेकिन हां, उत्सव समितियां कितने ही डस्टबिन रख लें, स्वच्छता तभी संभव है जब हम उनका उपयोग करेंगे। उत्सव अनगिनत लोगों का को रोजगार भी देते हैं और साथ साथ हमारी संस्कृति का तो प्रचार होता ही है, उसमें यह भी आवश्यक होता है, क्योंकि आज बहुत सारे लोग घरों तक सिमट गए हैं, बच्चों को घर से निकलना मुश्किल होता है, या घर से नहीं निकलना चाहते, वो अन्य जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, मोबाइल्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, इनकी स्क्रीन में ही ज्यादातर समय बीतता है, तो उनको भी लेकर के या पूरे परिवार के साथ अगर हम निकलते हैं तो उन्हें भी एक अच्छा वातावरण मिलता है और समाज और संस्कृति की समझ भी विकसित होती है। लेकिन हाँ, जैसे ही जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं तो परिवहन के नियमों का पालन भी करें और साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि स्वच्छता भी हमें बनाए रखनी है। तो इस तरह से हर एक व्यक्ति अगर अपनी जिम्मेदारी समझेगा, अपने परिवहन के नियमों का भी पालन करेगा और स्वच्छता का भी ध्यान रखेगा, तो कहीं किसी को कोई समझाइश की जरूरत नहीं पड़ेगी और अधिक प्रबंध करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और इस तरह से एक हम सुंदर, सहज और सुखद वातावरण तैयार कर सकते हैं और इस तरह से उत्सव मीठी सुनहरी यादें छोड़कर जाएंगे, उड़ते डिस्पोजल और कचरे के ढेर नहीं। तो आइए, गणराज का स्वागत स्वच्छता और सद्भाव पूर्वक हम करते हैं। तो आज के लिए सुबह सुबह में बस इतना ही। सुबह सुबह अभी आप सुन रहे थे और 7:05 हुए हैं, तो ये वक्त है कार्यक्रम कृषि संकेत का। तो आइए सुनते हैं पशुपालन में सूक्ष्म तत्वों की उपयोगिता या महत्व। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर बी के शर्मा।
1: सभी पशुपालकों को आज मैं एक विशेष विषय से अवगत कराना चाहूंगा। बुंदेलखंड क्षेत्र में जो दूध उत्पादन में कमी आई है, उसकी भरपाई के लिए ये कुछ कारण या मेरे बताए हुए उपाय आप सबको बहुत ही लाभान्वित करेंगे। व्यावसायिक खेती के कारण मिट्टी में जो सूक्ष्म तत्वों की कमी आई है, जैसे कि हम पशु चारा देते हैं, आपको लगता है हम बहुत अच्छा हरा चारा दे रहे हैं या जो भी हम दे रहे हैं वो पर्याप्त मात्रा में है, क्योंकि मिट्टी में ही सूक्ष्म तत्वों की जब कमी है तो उससे जो भी उपज आने वाली है, चाहे वो क्रॉप हो चाहे फोडर हो, तो उसमें भी वो कमी आपको मिलने वाली है। तो इस पर भी हमको ध्यान देना होगा। और जो दुग्ध उत्पादन के लिए जो सबसे ज्यादा जो आहार में सूक्ष्म तत्वों का महत्व है, दुधारू पशु में प्रजनन एवं उत्पादन क्षमता हेतु, उस पर हमको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि जो सूक्ष्म तत्व है, कोबाल्ट, आयरन, मैंगनीज, आयोडीन, सेलेनियम, जिंक, कॉपर और क्रोमियम, इन तत्वों को आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। मैं पशुपालकों को एक बात और बताना चाहूंगा, कुछ पशुपालक या डेयरी पालक अपने मन से अपने पशु को बी कॉम्प्लेक्स मतलब ताकत के इंजेक्शन या कोई ताकत वाली चीज देना चाहते हैं, तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, आज सभी पशुपालक ध्यान से सुनेंगे कि पशु के शरीर में जो जुगाली करने वाले पशु हैं, गाय भैंस, उनके शरीर में बी कॉम्प्लेक्स अंदर ही निर्मित होता है, बाहर से बी कॉम्प्लेक्स देने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जो पशु का चारा बंद हो जाता है, चरना ही बंद कर दे, हम उस स्थिति में केवल बी कॉम्प्लेक्स को देंगे। नहीं तो क्या होता है कि जो कोबाल्ट है वो विटामिन बी तैयार कर देगा, लेकिन अगर हमने कोबाल्ट की सप्लाई की तो ये मान के चलिए आपको बी कॉम्प्लेक्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि कोबाल्ट आपको खून में ग्लूकोज की कमी, जो विटामिन बी है, इससे बहुत सारी चीजें मेंटेन होती हैं। अच्छा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जितना भी है वो सब कोबाल्ट से तैयार हो रहा है, तो सिर्फ हमको कोबाल्ट पे फोकस करना है कि जिस मिनरल मिक्सचर में कोबाल्ट है वो अगर आपने दिया तो आपका बी कॉम्प्लेक्स विटामिन बी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, खून में जो ग्लूकोज की कमी थी शरीर में इसका बसा का उपयोग शुरू हो जाता है, फिर ब्लड में फैट बढ़ने लगता है, फिर फैटी लीवर हो जाता है, फिर लीवर की कार्य क्षमता कम हो जाती है, फिर आगे चल के कीटोसिस हो जाता है, फिर पशु कमजोर होने लगता है और विकास भी रुक जाता है, और दुग्ध उत्पादन की तो हम बात ही क्या करें। ऐसे ही मैं सेलेनियम की बात करूं कि प्रजनन के बाद उत्पन्न होने वाले जितने भी विकार हैं उनसे रक्षा या बचाव के लिए या रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसके लिए हमें सेलेनियम की

0: बहुत आवश्यकता होगी। तो जब भी पशुपालक मिनरल मिक्सचर या ये खरीदे तो इन चीजों का बहुत अच्छे तरह से ध्यान रखना है कि जैसे कि हमने अभी बताया आपको कोबाल्ट के बारे में और सेलेनियम के बारे में, तो ये दोनों चीजें हमको बहुत ही आवश्यकता है। इसी प्रकार आयोडीन, आयोडीन भी आपको जो ग्लूकोज की मांग है उसको पूरा करने में, और थायरॉक्सिन एच भी आवश्यक है दुग्ध उत्पादन में, बहुत ही आवश्यक है। थायरॉक्सिन बनाने में आयोडीन की आवश्यकता पड़ेगी, यदि आपने आयोडीन दिया तो आपका थायरॉक्सिन पशु के अंदर बनना शुरू हो जाएगा और उसकी उत्पादन क्षमता में बहुत पूर्ति होगी। ऐसे ही जिंक की बात करें, जब भी आप देखते हैं कि आपकी गाय ग्रोथ पे आ रही है या मिल्किंग पर आ रही है, तो कोशिकाओं की वृद्धि में, अडल्ट डेवलपमेंट में, हार्मोन के निर्माण में, भूख का जो नियंत्रण है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इस सबको मतलब एनकी और खुर की जो बाहरी सुरक्षा है वो जिंक से कंप्लीट होती है। अगर आपने जिंक दिया तो ये मान के चलिए एफएमडी रोग भी बहुत कुछ आपका कंट्रोल हो जाएगा और थनेला रोग भी बहुत कुछ कंट्रोल हो जाएगा। ऐसी प्रकार से कॉपर है एंजाइम निर्माण में और लोहे के आयरन के अवशोषण में, एब्जॉर्प्शन आप आयरन में, इसकी बहुत आवश्यकता होती है, नहीं तो कॉपर की कमी के कारण ये भी होता है। तो एक और तत्व की बात करता हूँ, मैग्नीज। मैग्नीज की कमी से विकास बिल्कुल नहीं होता, स्लो होता है। आपने देखा है बुंदेलखंड में जब एक बछिया पैदा होती है तो लगभग 3.5 से 4 वर्ष में वह पहली बार ज्ञापन होती है।
1: और इन्हीं सारी जानकारियों के
2: साथ अभी आपने सुना कार्यक्रम कृषि संकेत, विशेषज्ञ थे डॉक्टर बी के शर्मा। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर का प्रसारण, सुबह के 7:10 होने को हैं। कृपया हमारे अगले प्रसारण के लिए प्रतीक्षा करें।
1: यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।
3: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर से शुरू होगा सेवा संकल्प अभियान। शिप्रा के तट पर जलाए जाएंगे 25 लाख दीप। मुख्य न्यायाधीश ने न्यायपालिका में निरंतर सुधार और अधिक पारदर्शिता पर दिया बल। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार और बाजरा खरीदी के लिए आज से पंजीयन शुरू। और राज्य में फिलहाल बारिश का दौर थमा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रदेश में भी 17 सितंबर से सेवा संकल्प अभियान शुरू होगा। इस दौरान शिप्रा नदी के विभिन्न घाटों और महाकाल महालोक क्षेत्र में 25 लाख से ज्यादा दीप जलाए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों के प्रत्येक वार्ड में शाम 7 बजे एक साथ दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभियान का आयोजन प्रदेश के प्रत्येक ग्राम और नगर स्तर पर अधिक से अधिक जन सहभागिता सुनिश्चित करते हुए उत्साहपूर्वक किया जाए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण हेतु सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र को सुदृढ़ सक्रिय और समयबद्ध बताया है। उन्होंने न्यायपालिका में निरंतर सुधार और अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में कल आयोजित राम जेठमलानी स्मृति व्याख्यान के 6वें संस्करण, जिसका विषय था न्याय का क्रियान्वयन, पारदर्शिता और जनविश्वास कानून व्यवस्था के स्तंभ में मुख्य भाषण देते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सुधार एक मानक प्रक्रिया होनी चाहिए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा की विजय पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी के प्रति जनता का विश्वास लगातार बढ़ रहा है। राजस्थान में हुई विजय इसी विश्वास का प्रतीक है। श्री चौहान ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा,
1: श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास व्यक्त हो रहा है पूरे देश के अंदर, हाल ही में राजस्थान के अंदर स्थानीय निकाय के निर्वाचन में जो प्रचंड जीत मिली है, मेरी अपनी ओर से बधाई। और खास करके राहुल गांधी जी ने कोटा में ही अभी थोड़े दिन पहले कार्यक्रम किया और कोटा के होने वाले स्थानीय निकाय के चुनाव में प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी ने जीत करके युवाओं का रुझान किधर है ये बताने का अपने आप में ये प्रमाण है।
0: सरकार ने कहा है कि बैंक यूपीआई और रूपे द्वारा संचालित डेबिट कार्ड से 2,000 रूपये तक के लेन देन या भुगतान पर शुल्क नहीं लगा सकते। सरकारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार कोई भी बैंक या पेमेंट सिस्टम प्रदाता इन माध्यमों से लेन देन करने वाले व्यक्ति पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शुल्क नहीं लगा सकता। वित्त मंत्रालय ने यूपीआई लेन देन पर शुल्क संबंधी नियमों को स्पष्ट करने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत इन परिवर्तनों को अधिसूचित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को नई दिल्ली की यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इस आयोजन में 600 से अधिक भागीदार, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और 40 से अधिक देशों की प्रतिनिधि मंडल हिस्सा लेंगे। प्रदर्शनी में 6 देशों और 12 राज्य सरकारों की पवेलियन और एक विशेष स्टार्टअप पवेलियन होगा। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: अभियंता दिवस के अवसर पर लोक निर्माण विभाग द्वारा आज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में राज्य स्तरीय अभियंता दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। समारोह में अधोसंरचना निर्माण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और उल्लेखनीय योगदान देने वाले अभियंताओं, अधिकारियों, संयुक्त दलों तथा निर्माण एजेंसियों को लोक निर्माण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार और बाजरा उपार्जन के लिए किसान पंजीयन प्रक्रिया का निर्धारण कर दिया गया है। किसान 10 अक्टूबर तक पंजीयन करा सकते हैं। पंजीयन आज से शुरू हो रहा है। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने किसानों से आग्रह किया है कि निर्धारित समय में पंजीयन करा लें, जिससे किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने बताया कि किसान पंजीयन की व्यवस्था को सहज और सुगम बनाया गया है। प्रदेश में 1100 से अधिक पंजीयन केंद्र बनाए गए हैं। सागर जिले के बंडा क्षेत्र में दूषित शराब के सेवन से बीमार हुए लोगों का हाल जानने के लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कल बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज पहुंचे। उन्हें अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली तथा डॉक्टरों से उपचार की स्थिति के संबंध में चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस दुखद घटना से सरकार बेहद गंभीर है और पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश की शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूलों में कक्षा 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के अंतर्गत 19 सितंबर को भोपाल में मेधावी विद्यार्थियों को ई स्कूटी का वितरण करेंगे। इससे विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा की राह आसान होगी, साथ ही कॉलेज आने जाने में भी सहूलियत होगी। राज्य स्तरीय स्कूटी वितरण कार्यक्रम शासकीय सुभाष उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय शिवाजी नगर भोपाल में सुबह 10 बजे से होगा। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को कक्षा 12वीं में प्रथम प्रयास में ही 70% अंक के साथ स्कूल में प्रथम आना जरूरी है। पुरुष क्रिकेट में भारत आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरा टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। रविवार को पहले मैच में 7 विकेट से शानदार जीत के बाद भारत 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। श्रृंखला का तीसरा मैच गुरुवार को इसी मैदान पर खेला जाएगा। प्रदेश में फिलहाल भारी बारिश का दौर थम गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3-4 दिनों तक भारी बारिश के आसार नहीं है। प्रदेश में अब तक 88% से अधिक बारिश हो चुकी है। राज्य में सक्रिय निम्न दबाव क्षेत्र और टर्फ के असर से पश्चिमी जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश जारी रहने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगर मालवा जिले में कल सुबह से कभी तेज तो कभी धीमी बारिश हो रही है। लगातार बारिश होने के चलते कुंडालिया बांध में जलभराव होने के कारण बांध के 3 गेट खोलकर पानी निकाला जा रहा है। खंडवा में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान आयोजित किया जाएगा। अभियान की शुरुआत 17 सितंबर को शाम 7 बजे आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम के तहत दीप प्रज्वलन से होगी। कटनी में एनजीटी द्वारा नदी तालाब में प्रतिमा विसर्जन पर रोक लगाने के बाद विसर्जन के लिए बनाए गए तालाबों में ही प्रतिमाओं के विसर्जन करने को लेकर मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अभियान चलाया है। इंदौर में 17 सितंबर से प्रारंभ होने वाले सेवा संकल्प महाअभियान की व्यापक तैयारियां शुरू हो गई हैं। कलेक्टर शिवम वर्मा ने कल तैयारियों की विभागवार समीक्षा की। डिंडौरी की ग्राम पंचायत पौंडीमाल में सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते के मुख्य आतिथ्य में विभिन्न विकास कार्यों की भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम किया गया। मंडला के कान्हा टाइगर रिजर्व में विभागीय हाथियों के दीर्घकालीन स्वास्थ्य कल्याण के लिए वार्षिक हाथी रिजुनवेशन कैंप आज 15 सितंबर से शुरू होगा, जो 20 सितंबर तक चलेगा। भोपाल के भारत भवन में 2 दिवसीय भारतीय मातृभाषा अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है। हिंदी दिवस के अवसर पर 2 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर 7:20 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत।

इलाका। इस फिल्म का यह गाना अभी आपने सुना। किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों की आवाजें थी। अनजान ने यह गीत लिखा था और नदीम श्रवण ने धुन तैयार की थी। और इस गीत को सुनने के लिए हमारे इन सभी श्रोताओं ने व्हाट्सएप के माध्यम से हमें संदेश भेजा था। रघुनाथपुरा, जिला गंगानगर, राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी और मलोट कैंप पंजाब से संदेश भेजा था सतीश मिगलानी, अनमोल मिगलानी और महावीर संधू ने। गौतम नगर, नादेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले और नादेड़ महाराष्ट्र से यह संदेश उन्होंने भेजा था। अमरावती महाराष्ट्र से संदेश भेजने वाले हैं सिद्धार्थ गोंडा ने, अर्चना ताई गोंडा ने, हिरामन शेंडे जी, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिमा गोंडा ने। वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। जामा मस्जिद रोड गोगावा से हाजी इशाक लोलाबानी, मोहम्मद उमर कासमी, हाजी अयूब शेरी। और ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, उत्तर प्रदेश से संदेश भेजा है राम शरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी ने। और अब अगला गीत जो सुनना चाहते हैं हमारे सभी श्रोता, बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव, शौर्य नामदेव। बोरखेड़ा पित्रामल, जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मूड़त, चेतन नाहटा, दीक्षा कुश मूड़त। मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। नेहरू चौक पैठण से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनिता जाधव, आरती पूजा, प्रसाद जाधव, सोनल जाधव, बेबी सिया जाधव। जालना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम जाधव, सुभाष जाधव, चंदन जाधव, एकनाथ जाधव और संगीता जाधव। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया, मयंक भाटिया और इनका पूरा परिवार। आप सब सुनना चाहते हैं अग्निपथ फिल्म का गाना। आवाज अजय गोगावले की है, अमित भट्टाचार्य ने गीत लिखा है, धुन तैयार की है अजय अतुल ने।

बढ़ेगा आपका व्यापार। आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने

0: बदली स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आपके सवाल आपके विचार सुनिए सागर संवाद, जहां हर नागरिक बनता है अपने शहर की आवाज। आप भी बोलिए क्योंकि आपकी बात ही बनेगी सागर की बात। सागर संवाद, अपनी बात आकाशवाणी के साथ। सुनिए सागर संवाद आकाशवाणी सागर से महीने के पहले और पांचवें शुक्रवार को रात्रि 8:30 बजे से।
3: एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार तक। समय होता है 11:30 से 11:30 बजे तक।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: और अब आइए सुनते हैं फिल्म यादगार का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज में। हिंदी वर ने गीत लिखा है, धुन तैयार की है कल्याण जी आनंद जी ने।

यादगार, ये था उस फिल्म का नाम जिसका गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। एक गीत लिखा था इंदिवर ने और धुन तैयार की थी कल्याण जी आनंद जी ने, और इस गीत को सुनने के लिए संदेश भेजे थे हमारे इन सभी श्रोताओं ने, गांव खारिया ठाणी जिला सिरसा हरियाणा से सतवीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र सिंह बिजारनिया, राजपाल विजारनिया, अभिषेक विजारनिया, योगेश विजारनिया, पूजा विजारनिया, आरजू और नव्या विजारनिया ने। धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, आलिया और आयान, सनावद से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बोड़ाना, किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, अनुराग मोहन, खैरागढ़ लालपुर छत्तीसगढ़ से मोतीलाल भीमटे, सुशीला भीमटे, मेघा नेहा और येशु भीमटे, जिला छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद महाराष्ट्र से अनिल कुमार घोड़के, वैशाली अनिल, प्राजक्ता घोड़के, वैष्णवी घोड़के, गायत्री घोड़के और यज्ञेश घोड़के, भावरपुर वसना से राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन, नेहा, राजू और जगदीश देवांगन, बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव, शौर्य नामदेव, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किंसु तासु, अनवानंद सत्यम आनंद, बोहड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत, गुड्डी भगत, नेहरू चौक पैठण से सुरेश जाधव, अनिता जाधव, मुंडा टोला डोंडी लोहारा छत्तीसगढ़ से डोमेंद्र नेताम, गंगेश्वरी नेताम, चंचल नेताम, कामेश नेताम, माहिर नेताम, बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, सुरेश और रमेश साहू, डुमराव बिहार से डॉक्टर बबलू डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी, गोलाबाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभ्यानंद आर्य और परमानंद आर्य, 16 नंबर वार्ड गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर से वंदना मराठा, भाव मराठा, पूजा रेखा रघुवंशी, ललिता जगदीश चौहान, चंदा युवराज वानखेड़े, लक्ष्मी नारायण भाव खडसे और इनका पूरा परिवार, ये सारे सदस्य। और इसी के साथ कार्यक्रम मन चाहे गीत अब समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर का प्रसारण FM 102.6 MHz पर। 8:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम संगीत सरिता।

बलवीर निर्दोष की ये रचना थी जिसे आपने सुना पीयूष नागर के स्वर में। और अब आइए सुनते हैं संत सूरदास की रचना छाया गांगुली की आवाज में।

0: और इसी के साथ कार्यक्रम संगीत सरिता अब समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर का प्रसारण FM 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8 बजने को है समाचार प्रभात, दिल्ली से रिले करेंगे बस कुछ ही पलों में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार, सरकार ने कहा ₹2000 तक के UPI भुगतान पर बैंक कोई शुल्क नहीं लेंगे। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 का आज से गुजरात के गांधीनगर में शुभारंभ। भारत और कनाडा के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते पर अगले दौर की बातचीत शुरू। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र को मजबूत और कारगर बताया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज शाम दिल्ली में। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने कहा है कि बैंक ₹2000 तक के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI लेन देन और रूपे डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई भी शुल्क नहीं लगा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने UPI लेन देन पर शुल्क से जुड़े नियमों को स्पष्ट करने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत इन बदलावों को अधिसूचित किया है। एक रिपोर्ट।
2: वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह नियम ग्राहकों और छोटे व्यापारियों दोनों पर समान रूप से लागू होंगे। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में किए जाने वाले UPI लेन देन पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। अगर भविष्य में कभी डिजिटल लेन देन पर कोई शुल्क जैसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाया भी गया तो वह केवल दुकानदारों पर लगेगा, ग्राहकों पर नहीं। हालांकि ये शुल्क भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड लेन देन पर लागू MDR से काफी कम होंगे। सरकार का यह स्पष्टीकरण भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में हालिया संशोधन के बाद UPI लेन देन पर शुल्क की आशंकाओं के बीच आया है। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: प्रतिष्ठित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 आज गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में शुरू होने जा रहा है। दक्षिण एशिया में पहली बार आयोजित हो रहे इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल संयुक्त रूप से करेंगे। सम्मेलन का विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था, जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसमें 65 से अधिक देशों के 2000 से अधिक हितधारक भाग लेंगे।
3: दो दिवसीय वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम में विश्व भर से पर्यावरण विशेषज्ञ, नीति निर्माता, उद्योजक और शोधकर्ताओं हिस्सा ले रहे हैं। इस फोरम का मुख्य उद्देश्य पुरानी सामग्रियों और उत्पादों के पुनरुपयोग, रिसाइकलिंग और पुनर्चक्रण के माध्यम से सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। इस आयोजन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग, हरित ऊर्जा, रोजगार, वित्त और स्टार्टअप इकोसिस्टम जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर 4 प्लेनरी और 16 विषय आधारित सत्र आयोजित

0: डॉलर से घटकर वर्ष 2025-26 में 7 अरब 95 करोड़ डॉलर रह गया, जो 8.22% कम है। भारत से कनाडा को प्रमुख निर्यात में दवाइयां, लोहा और इस्पात, समुद्री खाद्य, सूती परिधान, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन शामिल हैं, जबकि कनाडा से भारत के प्रमुख आयात में दालें, मोती और अर्धकीमती पत्थर, कोयला, उर्वरक, कागज और कच्चा तेल शामिल है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेटकिन ने भारत और दक्षिण अमरीका के प्रमुख व्यापार समूह मरकोसुर के बीच तरजीही व्यापार समझौते के विस्तार के लिए बातचीत शुरू करने की घोषणा की है। दोनों मंत्रियों ने वर्तमान समझौते में आपसी हित के क्षेत्रों को शामिल करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र को सुदृढ़, सक्रिय, समयबद्ध और बेहद कारगर बताया है। कल नई दिल्ली में राम जेठमलानी स्मृति व्याख्यान के 6th संस्करण में उन्होंने ये बात कही।
4: Given a choice, a judicial officer,
5: अगर किसी न्यायिक अधिकारी को अंतरिम आदेश देने पर, मामले की सुनवाई टालने पर या अंतिम आदेश पारित करने पर शिकायत का सामना करना पड़े तो हर चरण में उसके खिलाफ शिकायत आ सकती है। यह गंभीर बहस का विषय है कि क्या ऐसी हर शिकायत को किसी सार्वजनिक मंच या वेबसाइट पर रखा जाना चाहिए या फिर इसके लिए न्यायपालिका के भीतर ही एक मजबूत व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था में पूरी निष्पक्षता और बिना किसी पूर्वाग्रह के शिकायतों पर विचार किया जाना चाहिए।
4: इन अ वेरी रिस्पॉन्सिबल मैनर मस्ट डील विद इट।
1: मुख्य न्यायाधीश ने न्यायपालिका में निरंतर सुधार और अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को नई दिल्ली की यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। ये वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र को एक मंच पर लाने तथा सहयोग, नवाचार, विनिर्माण, निवेश और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच है। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान के लोगों ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वे डबल इंजन सरकार के अंतर्गत सुशासन और विकास की नीतियों का पूरा समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोगों के बीच प्रेम और सद्भावना बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिनसे हृदय में प्रेम, सौहार्द और सद्भावना का विकास हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। दिशा सालियान की 8 जून 2020 को एक इमारत की 12वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद ये प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, उनके सुरक्षाकर्मी डिनो मौर्या, रोहन रॉय, सूरज पंचोली, रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती और पुलिस अधिकारियों सचिन वाजे तथा परमबीर सिंह सहित कई लोगों के नाम हैं। झारखंड में CID ने झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं के मामले में एक कोचिंग सेंटर संचालक संजीत कुमार को गिरफ्तार किया है। रांची के रातू रोड इलाके में शिवांगन कोचिंग सेंटर चलाने

0: में संजीत कुमार पर आरोप है कि उसने एजेंट के तौर पर उम्मीदवारों से परीक्षा पास कराने का वायदा कर पैसे वसूले थे। पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर गहरा गया है। यमन के ईरान समर्थित हाउसी विद्रोहियों ने दक्षिणी सऊदी अरब के एक सैन्य हवाई अड्डे पर कई मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। सऊदी गठबंधन के अनुसार इस हमले में 13 नागरिक घायल हुए हैं, जिसके बाद 4 पड़ोसी शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दूसरी तरफ हाउसी विद्रोहियों ने लाल सागर के पास देश के पश्चिमी तट पर अपनी स्थिति मजबूत करना शुरू कर दिया है। इस बढ़ते तनाव के कारण खाड़ी देशों ने ईरान के साथ होने वाली बातचीत को फिलहाल टाल दिया है। जानकारों का मानना है कि यदि ये टकराव और बढ़ा तो लाल सागर के रास्ते होने वाली दुनिया की तेल आपूर्ति बड़ी मुसीबत में पड़ सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन एक दूसरे के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने पर सहमत हो गए हैं। हालांकि उन्होंने इसे लागू कराने से जुड़ी जानकारी नहीं दी। सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन रूस के ऊर्जा ठिकानों पर हमला नहीं करने और रूस भी ऐसा ही करने पर सहमत हुआ है। हालांकि पोस्ट में ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि किन ऊर्जा प्रतिष्ठानों को इस समझौते के दायरे में रखा जाएगा या क्या दोनों पक्षों ने कोई शर्त रखी है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों से पहले डाक से मतदान प्रतिबंधित करने की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना को खारिज कर दिया है। न्यायाधीशों ने एक संघीय न्यायाधीश के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें डाक सेवा को डाक मतपत्रों से जुड़े नए नियमों को लागू करने से अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। न्यायाधीश सैमुअल एलिटो और क्लेरेंस थॉमस ने संक्षिप्त आदेश से असहमति जताई। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी दिन भर ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान में बिजली चमकने की आशंका है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। तीसरा और अंतिम मुकाबला दिल्ली में ही बृहस्पतिवार को होगा। भारत ने पहले T20 मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। एशियाई ट्रैप चैंपियन निशानेबाज सबीरा हारिस के नेतृत्व में 20 सदस्यीय भारतीय दल आज से इटली में ISSF जूनियर विश्व कप शॉटगन में भाग लेगा। प्रतियोगिता का समापन 19 सितंबर को होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मनोज।
2: धन्यवाद प्रियंका। आज अधिकांश अखबारों ने रक्षा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट को प्रमुखता से दिया है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है वास्तविक नियंत्रण रेखा, LAC पर चीन ने घटाई सैन्य तैनाती, देश फिर से चौकस। दैनिक भास्कर ने लिखा है रिपोर्ट में तकनीकी बदलाव का रोड मैप बताया गया। ऑपरेशन सिंदूर से सबक, ड्रोन के 9 फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट शुरू होंगे। अमर उजाला ने भारत चीन में भरोसा और बढ़ा शीर्षक से चीन के विदेश मंत्री का बयान दिया है। सुधार और नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहे रिश्ते, नव भारत टाइम्स की खबर है। साइबर ठगी के आरोप पर बैंक खाते से लेन देन पर 60 दिन तक लग सकेगी रोक, RBI ला रहा नियम। हिंदुस्तान के आर्थिक पन्ने की खबर है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने करोड़ों अंशधारकों को दी बड़ी राहत, PF की सूचनाएं अब व्हाट्सएप पर मिलेंगी। EPFO पोर्टल या उमंग ऐप पर बार बार लॉग इन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को आसान हिंदी में समझ सकेंगे लोग, कल हिंदी दिवस पर न्यायालय की नई पहल को दैनिक जागरण सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। लोक सत्य ने लिखा है जन सूचना सेवा में सरल हिंदी सारांश के साथ ऑडियो वीडियो बुलेटिन भी मिलेंगे। जनसत्ता की यह खबर ध्यान खींचती है, लंदन में टेम्स नदी के तट पर पहली बार हुई गंगा आरती, हजारों लोग शामिल हुए, वाराणसी के घाटों जैसी दिखी झलक।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा 2000 रुपए तक के यूपीआई भुगतान पर बैंक कोई शुल्क नहीं लेंगे। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 का आज से गुजरात के गांधीनगर में शुभारंभ। भारत और कनाडा के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते पर अगले दौर की बातचीत शुरू। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र को मजबूत और कारगर बताया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की। और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज शाम दिल्ली में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: यह है आकाशवाणी का सागर केंद्र FM 102.6 MHz पर। सुबह के 8:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोक संगीत में कुछ बुंदेली लोक गीत। सबसे पहले ये गणेश भजन सुनते हैं सीताराम कुशवाहा से।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: और अब आइए सुनते हैं ये एक और लोक भजन शांति बाई की आवाज में।

श्रोताओं, एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। आज 11 बजे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने की रिकॉर्डिंग की जाएगी। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए फोन करने के लिए हमारा फोन नंबर है 240-845 और सागर का एसटीडी कोड है 07582। और अब कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं लोकगीत विजय सिंह की आवाज में।

और इसी के साथ कार्यक्रम लोक संगीत अब समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर का प्रसारण। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम पॉडकास्ट विद आकाशवाणी सागर। इसमें आज कुश्ती का बदलता स्वरूप इस विषय पर मनीष यादव से बातचीत कर रहे हैं जयशेखर।

0: नमस्कार श्रोताओं, एक बार फिर हाजिर हैं आपका चहेता और पसंदीदा कार्यक्रम पॉडकास्ट विद आकाशवाणी सागर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त जय शेखर। श्रोताओं, एक ऐसी विधा है जो सदियों से भारत में खूब फली फूली और लोगों ने बहुत नाम कमाया। कई बार तो ऐसा कहा जाता है दारा सिंह हो इनके नाम लेके अपने आप की तुलना करते हैं। यानी सोचिए ये विधा कितनी ऊंचाई पर थी कि लोग अपने आप को कुश्ती में ही झोंकना चाहते थे, पहलवानी कुश्ती। तो कुश्ती के आज के परिदृश्य में हमने बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया हमारे स्टूडियो में जिला कुश्ती संघ के सचिव मनीष यादव जी को। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार भाई साहब।
0: कुश्ती के बारे में अगर ये कहा जाए कि जमीन से जुड़ा हुआ ये खेल है और ये ऐसी विधा है जहां पर लोग गरीब हो अमीर हो या कोई भी भेदभाव ना करते हुए आपस में प्रेम भाव रखते हैं और ये कुश्ती सीखते हैं, क्या कहना है आपका?
1: ये कहना चाहूंगा कुश्ती एक ऐसा खेल हमारा पुरातन काल सदियों से, हम अगर हमारे वेदों ग्रंथों को उठाकर देखें तो इसमें हमें चाहे रावण के साथ बाली का युद्ध हो, चाहे महाभारत काल में कृष्ण और कंस का युद्ध हो, प्रमाण है कि पहलवानी हमारे पुरातन काल से चली आ रही। और आज के इस दौर में स्वरूप बदला हुआ है, मिट्टी के अखाड़ों से निकलकर आज मैट के इस परिदृश्य में कुश्ती पहुंच चुकी है। लेकिन आज भी हमारे इस भारत देश में हम कहें, चाहे वो नागपंचमी का पर्व हो, चाहे वो चंद्रलायन हो, सूरज के आते ही भोर हुआ, लाठी ले जम का शोर हुआ, तो इन पंक्तियों को हम बचपन में सुनते आए और आज भी हम उनको जीवंत करते हुए आज भी इस परंपरा को निभाने का प्रयास कर रहे हैं। और आने वाली जो भावी पीढ़ी है उसके लिए भी ऐसे मंच तैयार कर रहे हैं, ऐसे मार्गदर्शन के उनको मिले कि कभी वो पिछड़े ना, वो आगे बढ़े।
0: जी, पहले मिट्टी के अखाड़े हुआ करते थे, लोग बिना किसी शक सुबह के बिना संकोच के वहां चले जाते थे। लेकिन जैसे ही कुश्ती मैट पर आई तो अब लोगों को संकोच होता है, जो पुराने अखाड़े हैं उनकी प्रासंगिकता थोड़ी सी कम होने लगी। तो ऐसे में आज कुश्ती के लिए बच्चे कहाँ जाएं?
1: आज भी भाई साहब बिल्कुल सही कहा आपने कि मैट की जो कुश्ती है उसको संकुचित होने लगी कि मैट पे हम जानते। आज भी हमारे इस बुंदेलखंड अंचल में मिट्टी के अखाड़ों की संख्या अधिक है और वहां पर मिट्टी के अखाड़े आज भी फलीभूत है। हमारे सागर मुख्यालय में हम कहें तो मिट्टी जो भारतीय शैली इसे कहा जाता है, तो आज भारतीय शैली के माध्यम से भी कुश्ती को प्रमोट किया जा रहा है।
0: अच्छा मनीष जी, हमें याद आता है कि जब हम अखाड़ा जाया करते थे, शिवाजी अखाड़ा चकरा घाट, तो सबसे पहला काम कि अपने घर से दौड़ के जाओ या साइकिल पे जाओ। उसके बाद दूसरा काम मिलता था फावड़ा और गैती मिल जाती,
1: अखाड़े को गोड़ना।
0: उसके बाद फिर कसरत करना
1: जी।
0: उसके बाद जोर लगाना, दो से तीन से चार से। आज भी क्या ऐसी ही परंपरा बनी हुई है या कुछ कमी आई है?
1: परंपरा भाई साहब यही है आज भी कि बच्चा अखाड़े में पहुंचे तो दौड़ के पहुंचे, फिर वहां के अखाड़े को गोड़ना। अगर चूंकि स्वरूप बदल रहा है लेकिन विधा और उसके नियम वही हैं कि आपको दौड़ के आना है अखाड़े में पहुंचना। अब चूंकि गोड़ने की जगह मैट आ गया तो वहां पे अब उसको अपने हाथों से उस मैट को पूरा साफ करना, मतलब वही प्रक्रिया आज भी है।
0: अच्छा,
1: मतलब उसमें बदलाव नहीं है, बस स्वरूप थोड़ा सा बदला
0: जी।
1: तो उसमें सफाई पूरी करना पड़ेगी, खिलाड़ी को करना पड़ेगी, उससे हमारा जो मैट का जो अखाड़ा है बिल्कुल क्लीन, आप चाहें तो देखें तो इतना प्यारा सुंदर लगता है परिदृश्य कि आप चाहें तो जैसे मिट्टी के अखाड़ों में हम जैसे गोड़ा हुआ अखाड़ा देखते थे तो वहां पे जाने की इच्छा होती थी।
0: और मनीष जी, कितना मजा आता था उस वक्त जब मिट्टी उठा के हम अपने शरीर पे मल लेते थे कुश्ती के पहले, साथी के सामने वाले के शरीर पे भी मिट्टी लगा दिया करते थे।
1: नहीं, आज भी हम आपको बताएं अखाड़ों में जो मिट्टी है वो हमारे इसे शरीर की इस चमक को बढ़ाती है। कोई ये ना कहे कि वो मिट्टी धूल है, ये मिट्टी धूल नहीं, ये हमारे लिए फूलों से भी बड़ी
0: बिल्कुल पवित्र मानी जाती है, बगैर पैर पड़े हम लोग उसमें।
1: और आज भी इसका सम्मान हम लोग भी करते हैं कि बिना लंगोट के अखाड़े में एंट्री नहीं है, ये हमारे गुरुओं के संस्कार हैं, उनके अनुशासन का आज भी हम लोग पालन करते हैं।
0: अच्छा, दांव पेंच तो अभी भी वही है, लेकिन जब हम ओलंपिक में देखते हैं या एशियाड खेलों में देखते हैं तो पॉइंट वाला सिस्टम किस प्रकार से हो गया, थोड़ा सा हमें ये बताएं। जैसे मिट्टी पकड़ना होता था तो मिट्टी पकड़ ली पहलवान, तो आदमी कई लोगों का तो नाम पड़ जाता
1: धरती पकड़
0: पहलवान है।
1: नहीं बिल्कुल आपने सही कहा कि कई बार हमने, आपने भी देखा होगा दंगलों में, एक जो 80 और 19 का जो दशक रहा
0: स्टेडियम में हुआ करता था,
1: उस समय सागर का स्टेडियम रहा भी, तो कहीं ना कहीं भाई साहब आज भी वो स्वरूप है और अब रही बात कि मैट पर कुश्ती आ गई है, क्योंकि हाँ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर आपको ओलंपिक का जो मंच चाहिए तो वहां आपको मैट की जो कुश्ती है उसको पकड़ना होगा,
0: अच्छा,
1: अन्यथा आप पिछड़ जाएंगे।
0: हाँ।
1: तो उसके लिए स्वरूप वही है, बस दाव पूरे वही है, बस उस दाव को लगाने का जो स्टाइल
0: है,
1: हाँ, जो तकनीक है उसमें अंकों का इजाफा हुआ है।
0: अच्छा अच्छा।
1: दाव वही है। सपोज दैट एक उदाहरण दे, हम और आप फाइट कर रहे हैं, और आपने तकनीक के माध्यम से आपके 8 अंक हैं, और 10-0 के डिफरेंस कुश्ती फिनिश।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: अब वहाँ आप, हमने अगर आप पर धोबी या साल्टो या कलाजंग मारते हुए सीधा दाव लगाया और आपको दोनों कंधे के बल अखाड़े में रोक के रखा है 2-5 सेकंड, तो वहाँ पर वो आपके 8 अंक काम नहीं आए, वो हमारा दाव बड़ा भारी।
0: जबकि देखिए ना, मिट्टी में ऐसा नहीं होता।
1: हाँ, मिट्टी
0: में सिर्फ चित्रपट हो जाता
1: है। तो इसमें भी हम आपको बता दें, आज जो भारतीय शैली जो मिट्टी की कुश्ती है उसमें आज अंतर आ गया है। अब वहां पर भी पॉइंट का नियम आ गया है।
0: अच्छा अच्छा।
1: मिट्टी की कुश्ती में भी भारतीय शैली पद्धति जो कुश्ती हो रही है, उसमें भी अब पॉइंट का नियम है।
0: अच्छा, बच्चों को तैयारी के लिए सागर में कौन कौन से स्थान है जहां पर वो जाके मैट पर तैयारी कर सकते हैं कुश्ती की?
1: अभी वर्तमान में हम सागर में आपको बताएं तो भीम अखाड़ा सागर पुरब्याऊ, जहाँ काली मैया का स्थान, वो एक सेंटर है। दूसरा सेंटर आपको है चक्राघाट में शिवाजी अखाड़ा, वहाँ पर भी मैट की व्यवस्था है और मिट्टी दोनों। एक और हमारा कबूला पुल में श्रीराम अखाड़ा कबूला पुल है, वहां पर भी मैट की व्यवस्था है वहां पर आप। और एक और साथ में आप चाहें तो, चूंकि हम ग्रामीण क्षेत्र के एरिया में हम कवर करते हैं, तो वहां बजरंग अखाड़ा गढ़पेरा परिसर में नीचे, वहां पर भी मैट की व्यवस्था।
0: क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात बताई। तो इसमें बच्चे कैसे जाएं, हमें ये बताइए पूरी प्रक्रिया क्या है, क्या कोई फॉर्म भरना पड़ता है?
1: जहां तक जो भी जनरेशन है, जो भी हमारे शहरवासी या ग्रामीण क्षेत्र में है, जहां पर उनके पास जैसे अखाड़े हैं, तो वहां पर वो अपने अखाड़े में अपनी दैनिक गतिविधि करें, और उसके लिए अगर उनको प्रोफेशनल, अगर कुश्ती में अगर आगे आना है तो क्लब या जो अखाड़ा है वहाँ के जो उस्ताद या गुरु उनके प्रशिक्षक हैं उनसे संपर्क करें, और जहाँ तक हम लोगों की कनेक्टिविटी रहती है उस क्षेत्र में, चाहे तहसील का हो चाहे बीना क्षेत्र का हो। जैसे अभी बीना में वर्तमान में ग्रामीण रूरल एरिया है, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसे सेंटर हैं वहाँ पर ट्रेनिंग मिल सकती है।
0: अच्छा अच्छा।
1: जैसे बीना में हम कहें तो बीना बजरंग व्यायामशाला में वहाँ पे मैट उपलब्ध है। ग्रामीण क्षेत्र में आ जाए तो बीना रिफाइनरी के 24-25 गांव हैं, वहाँ पर एक पार सेंटर है, यूपीसीएल बीना रिफाइनरी चलाती, आगा सौद देहरी, ऐसे सेंटर वहाँ पे बच्चे अपने जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को वहाँ भेज के उसकी प्रैक्टिस करा सकते हैं, और यहीं से उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मंच मिलेगा।
0: अच्छा अच्छा।
1: उसके लिए हम लोग कुश्ती संघ के माध्यम से, जैसे जैसे ऊपर से निर्देश आते हैं हमारे पास ओलंपिक एसोसिएशन के माध्यम से, हम उनको मंच प्रदान करते हैं।
0: चलिए, बहुत ही अच्छी बात बताई आपने। मनीष जी, कितने दांव पेच आपको मौखिक रूप से याद है?
1: ये जो कुश्ती है ये विधा हमारे और आपके जो दर्शक होते हैं ना, दर्शक देखने उनके भी ये ब्लड में है। तो कहीं ना कहीं जब वो दाव पहलवान या धोबी पाट या धोबी पछाड़ या कलाजंग मारता है और जब वो प्रदर्शन होता है, तो हम भी अपने चेयर या जहां पर वो पब्लिक भी बैठी वो भी वहां से खड़े होकर और उसका उत्साह
0: बढ़ा बढ़ा।
1: ये है हमारे जीन्स है, हमारे जो पुरातन काल हमारे इस देश का, ये हमारे ब्लड में है। आज भी कुश्ती हर भारतवंशी के ब्लड में है, और हर कहीं जब चाहे हम और आप कह देते हैं कि आप दो दो हाथ हो जाए, तो ये कहीं ना कहीं ये वही अंश है,
0: बहुत
1: जींस में आ रहा है।
0: अच्छा मनीष जी, अब कुश्ती की बात तो हुई, लेकिन हमें ये बताएं कि एक 18 साल का पहलवान है और एक 50 साल का उस्ताद है, उस्ताद भी पहलवानी करता है, ये जरूरी है, तो इनकी डाइट कैसे होना चाहिए, खान पान में किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है?
1: बिल्कुल, कुश्ती में डाइट पोषण का बड़ा महत्व है। नॉर्मली बच्चा अगर रनिंग में है, अखाड़े में अभ्यास करता है, तो घी दूध कंपलसरी है, ये चीजें आवश्यक हैं हमारे पहले। जैसे आपने बताया उस्ताद या 70-80 से आसपास है, तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि उम्र के हिसाब से भी पोषण का, जैसे दूध तो कंपलसरी है होना चाहिए। जैसे अब उम्र ढलान पे है तो वहां पर कहते हैं कि प्रोटीन्स वाइज इन सभी चीजों की आवश्यकता है, तो जैसे मुनक्का खाना, किशमिश, बादाम थोड़े कम रूप स्वरूप में, क्योंकि एक एज और एक नया पहलवान और एक सीनियर, तो वहां दोनों में अंतर है, क्योंकि मेहनत और पोषण दोनों में डिफरेंस हुआ।
0: अच्छा सर, दोनों में अंतर होता है।
1: दोनों में अंतर।
0: अच्छा, आप ध्यान देते हैं बच्चों को कि उनके पोषण में क्या क्या जा रहा है, आप पूछते हैं क्या उनसे?
1: अभी जैसे हम लोग नियम बनाए हुए हैं कि बच्चे को जैसे सुबह का प्रैक्टिस हुई, सुबह प्रैक्टिस में कम से कम उसको दूध अंकुरित डालें, ये कंपलसरी है, और अगर हार्ड मेहनत चल रही है, जैसे 2.5 घंटे मेहनत चल रही है, तो उसके लिए बादाम कंपलसरी है।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो बादाम के लिए घोट के
0: पीसा जाता है जो
1: इसके, हाँ दोनों प्रकार की देसी पद्धति है, और एक आज की जो समय के अनुसार बचत करते समय और मिक्सी में डाल के बादाम डाल दिए, अपने उसमें पिस्ता डाल दिया, अपने गुलाब के पत्ती डाल दिए, और इलायची मिश्री, पांच छह चीजों, काली मिर्च, पांच छह चीजों का जो मिश्रण है, ये उस पहलवान की जो गर्मी होती है जब वो इतने हार्ड वर्क करता है, तो ये तासीर, ये जो ठंडाई भी बोलते हैं,
0: ठंडाई,
1: ये ठंडाई उसके लिए अंदर से उस
0: कूल पावर को
1: कूल करती है, और पहलवान को आप देखें ना, पहलवान पर हमेशा आपने देखा हो कूल मिलेंगे, शांत स्वभाव।
0: तो इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से पॉडकास्ट विद आकाशवाणी सागर, और हमारे साथ हमारी स्टूडियो में मौजूद हैं जिला कुश्ती संघ के सचिव मनीष यादव। और जैसा आपने बताया कि एक बहुत ही अच्छी बात बताई कि जो अभी तक देखा कि जो पहलवान होते हैं उनको गुस्सा कम आती है, लोगों को डर लगता है पहलवानों से भिड़ने में, लेकिन गुस्सा कम आती है, इसके पीछे क्या कारण होते हैं?
1: इसका कारण है सब हमारे अनुशासन, हमारे संस्कार है, क्योंकि एक पहलवान जो पहलवानी कर रहा है वो मालूम है कि हम जो भी नॉर्मली जो पब्लिक या तो उनके जैसे दो चार हमारे लिए जनरली एक थिंकिंग, ये सत्य है, क्योंकि एक पहलवान वो जो अपने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने उस अखाड़े की उस देसी मेहनत को करता है, और अपने आप को इतना बलिष्ठ ब्रह्मचर्य से माने कहते लंगूट का पक्का देसी स्टाइल,
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो वो उस धीर उस धीरज को धैर्य में रखने के लिए उस अपने धीर वीर माने धीर तो रहेगा वो तब जब वो वीर बने, और वीर वही कहलाता है जिसके पास धैर्य है, क्योंकि पहलवान उसको मालूम है कि अगर हम सामने वाले पे अगर कोई भी प्रहार करेंगे तो उसके बाद उसकी यथा स्थिति क्या होगी, इसलिए वो समझ, इसलिए मैं आप देखें पहलवान के पास अभी कुछ भी बोलते वो कहेगा चलो
0: जाओ,
1: क्योंकि उसको मालूम है हमारा और इनका कोई मेल नहीं है।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात बताई आपने।
1: और कुश्ती में चारपन होते हैं, ये हमारे गुरुओं ने हमें सिखाया है, धीर वीर गंभीर, और चौथा जो पन है वो बहुत कम लोगों में चाहे हमारे मुनि महाराज जी, हनुमान जी महाराज जी को मिला महावीर।
0: अच्छा अच्छा, क्या
1: उसके बाद हमारे मुनि महाराज जी, मुनि महाराज जी, धीर वीर गंभीर, ये तीन पन जिसके पास है वही वो चौथा पन क्रॉस करता है।
0: बहुत ही अच्छी बात बताई आपने।
1: तो जो पहलवानी करेगा सबसे पहले उसको धैर्यता रखना होगी, एक कुश्ती के हारने के बाद उसको ये नहीं देखना कि मैं हार गया आज पहलवानी बन, नहीं, क्योंकि अगर उसमें धैर्यता रहेगी तब तो अपने आप को परिपक्व बनाया, तब वो अपने आप को अच्छा वीर कहना ले लाए।
0: अच्छा, कोई ऐसा बच्चा है जो आर्थिक रूप से उतना मजबूत नहीं है, तो आपका कुश्ती संघ
1: जी
0: क्या क्या सुविधाएं उसको देता है? कम से कम खान पान की बात ऐसी आ जाती है कि कई बार बचपन में ऐसा होता है कि बच्चों को लगता है कि हम कर सकते हैं लेकिन उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता, तो आपकी क्या भूमिका है इसमें?
1: चूंकि हम कुश्ती संघ के माध्यम से हमारा उद्देश्य है, और अगर ऐसी कोई स्थिति आती है हमारा उद्देश्य है कि बच्चे को सही मार्ग मिले, और उचित अगर वो मेहनत कर रहा है और लगनशील है तो उस मंच तक पहुंचे, उसका लक्ष्य उसका मोटो क्या है वो वहां पहुंचे। अब कहीं अगर आती है बात आर्थिक परिस्थिति, बच्चा कमजोर है और कहीं ना कहीं उसकी कमजोरी हमें दिखती है, और उसके साथ में अगर उसके पेरेंट्स का हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिले कि हाँ वो चाहता है कि सर ऐसा हो, और उसकी लगन, ये दोनों चीजें मायने रखती है। हमने अगर सपोर्ट किया, हम कुश्ती संघ के माध्यम से ऐसे बहुत से सागर जिले में ऐसे समाजसेवी हैं कि अगर हम हमारे इस संगठन के माध्यम से किसी भी बच्चे के लिए उनसे निवेदन करें जो वो भी सहयोग करते हैं, बस आवश्यकता है वहां से प्रयास की
0: जी, बहुत
1: अगर माता पिता अगर कहेंगे तो हमारी तरफ से कमी नहीं है, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे बच्चे नहीं किसी भी शहर के, अगर हमारे संभाग का कोई बच्चा है अगर उस मंच पर पहुंचने लायक है तो हम उसके लिए प्रयास करें, बस उसकी तरफ से उसको प्रयास करना होगा।
0: मनीष जी, हमें ये और बताएं आप कि इसमें रोजगार के कितने अवसर मिलते हैं हमारे पहलवानों को, जो बच्चे हैं उनमें हौसला बढ़ाने के लिए किस किस स्तर पर जाकर उन्हें रोजगार मुहैया हो जाता है?
1: हम जानते भाई सब पहलवान और पहलवानी के साथ में अपने आप उस शरीर सौरष्ट को बलिष्ठता के रूप में साथ में अगर रोजगार मिल जाए तो एक पहलवान की बहुत अच्छा मंच है,
0: सोने पे सुहागा हो जाता है।
1: तो हम लोग प्रयास यही करते हैं हमारे संघ के माध्यम से, और हम चूंकि एज ए ट्रेनर हैं तो हम चाहते हैं बच्चा अगर अच्छा खिलाड़ी अगर बना है तो उसके लिए प्रदेश सरकार, जैसे इंटरनेशनल अगर यहाँ से होता है तो प्रदेश सरकार उसको विक्रम अवार्ड या क्लब अवार्ड देती है, और ये अवार्ड अगर देती है तो साथ में उसको ज्वाइनिंग लेटर किसी विभाग में
0: बहुत
1: नगरी प्रशासन
0: जी, जी, जी।
1: प्लस अगर और बड़े मंच में मिलता है तो राष्ट्रीय स्तर पे आप जाएंगी
0: हाँ।
1: या फिर हमारे जो भी चाहे रेलवे प्रशासन हाँ। चाहे आर्मी का हो ऐसे कई ऐसे विभाग हैं वहां पर खिलाड़ियों के लिए मंच है। जैसे अभी सपोज अभी लेटेस्ट 24 से 28 तक भर्ती चल रही थी
0: हाँ।
1: तो वहां स्पोर्ट पर्सन के लिए भर्ती थी जो अच्छा, नेशनल अच्छा। पार्टिसिपेट हुए या स्टेटमेंट ऐसे बच्चों के लिए वहां पर रास्ताएं। और अब रही बात अगर अच्छा खिलाड़ी नहीं बन पाता किन्हीं कारण बस तो अच्छा टीचर भी बन सकता है
0: हाँ, कोच बन सकता है ट्रेनर बन सकता है।
1: तो बच्चा अपनी स्टडी करे ग्रेजुएशन जैसे 12वीं पास आउट तो आप नए नए शिक्षा के क्षेत्र में बीपीएस आया 12th पास आउट बच्चे इसको कर सकते हैं। तो बाउंसर के रूप में भी पहलवान अच्छा करियर बना रहे हैं
0: हाँ।
1: क्योंकि मालूम है सबको मालूम है पहलवान एक धीर वीर
0: हाँ,
1: तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की आवश्यकता है क्योंकि कोई भी झगड़ालू प्रवृत्ति हाँ। कहीं भी चले तो बैलेंस करके उनको नियंत्रित करे।
0: तो श्रोताओं ये थी एक छोटी सी मुलाकात जिला कुश्ती संघ के सचिव मनीष यादव से। आपने हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी। मनीष जी आप हमारे स्टूडियो आए कुश्ती की बारीकियों को और कुश्ती की परंपरा के बारे में आपने बहुत ही अच्छा प्रकाश डाला। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं हम फिर हाजिर होंगे किसी एक और ऐसे ही मेहमान के साथ होगी बहुत सारी गुफ्तगू। तो दीजिए जय शेखर को इजाजत। नमस्कार।

अभी आपने सुना कार्यक्रम पॉडकास्ट विद आकाशवाणी सागर, जिसमें मनीष यादव से बातचीत की जयशेखर ने। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर का प्रसारण। पेश है कार्यक्रम संगीत सरिता। संगीत सरिता में आइए सुनते हैं सोनू निगम को, फैज अनवर के बोल, धुन साजिद वाजिद की।